0: था।
1: प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र

0: आज अन्तर्मन को आवाज
1: स्टूडियो राति को 9 बजे
2: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पो चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनी प्रोपाइटर बाजीराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301

0: 103.8 अन्तर्मन को आवाज
1: स्टुडियो टाइम
2: अहिले बिहानको 5 बज्यो
1: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चांदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस्ट चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना